भाई जोगा सिर करना आवाज पई सत पौड़ी तू पै ऐसा किया पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखदा पे वापस आ गई। थोड़ी देरी के बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा से फिर आंदा फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना आवाज।

अजे भी कोई वेचना पे मैं तो समझिया कि हूं कोई नहीं वेचना पर अजे भी कोई तक रहे है मना जरा खैर तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह फिर आंदे फिर कन्ना आवाज केड़ी।

0: तो जत वाल लंगोट तेन गुरु ने दिता है। ये जी कट है ये जत वाल लंगोट है ते तू किड़े पासे तुर कच्छ लक दी मारे ताने एओ फेक तेरा सतगुरु जाने ओए पंजे कट्टे तार के तैं झूठ बनाया था के जा सिखा कर अपने कर जबदी दबा के अमरपेड़ा तो गुरबाणी नाल जुड़ना सी किधर आज पहरेदार दे बचन सुन के पाई जोगा सिंह जिन्हां पौड़ियां थाणी उपर चढ़िया सी तां कर ऐसा है कोई दिल च ख्याल आ गया फिर पौड़ियां ते चढ़ गई। अगे तो पहरेदार ने वो कुछ किया सी ए उपर पहुंचिया पहुंचिया पहरेदार ने कहा मुड़ आ गए हैं हां क्यों आए हैं दो गल्लां तेरे नाल करनियां कर की कहना चाहुंदा भाई जोगा सिंह ने कहा मैं स्वास्थ्य इतने नहीं आ सकता कि मैं गुरु का सिख हां पहरेदार ने कहा इस नरक कुंड विच पापी बंदे आउंदे इस बूहे दे उत्ते पहले बंदे आउंदे हन ते कलगियां वाले ने तो सिख नूं रोशन मुनारा बनाया है वो अनेरे क्यों दे इस वास्ते भाई गुरु का सिख इत्थे नहीं सौंदा। भाई जोगा सिंह ने कहा ठीक है जे मैं गुरु का सिखा इत्थे नहीं सौंदा फिर मेरी अखां धोखा नहीं खांदियां तू भी ते गुरु का सिख जापदा तू इत्थे क्यों आया आखो श्री भाई जी उस वेले प्यारी संगत पहरेदार दे नेत्र फजल हो गए हैरान हो के भाई जोगा सिंह ने कहा कोई जरूरी ड्यूटी है पहरेदार ने कहा हां भाई ये तो मजबूरी की ड्यूटी पे हो जाता आखो श्री भाई जी मेरा कितनी खरत करता इसे खोने वास्ते पर मजबूरी की ड्यूटी भाई जोगे ने कहा तो यह मजबूरी की ड्यूटी छड़ क्यों नहीं देंदा पहरेदार ने कहा कि करा किसी वेले किसी ने कहा कि मैं तेरे जोगा ते मैं भी कह बैठा जे तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा ओदी बांह फड़ी सी बांह फड़े दी लाज पे रखदा सती भाई जी मेरा चित तो नहीं करता पर मजबूर चंगा भाई तेरी मर्जी भाई जोगा सिंह ਇਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਈ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
1: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ

मान दे बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रही। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतों की बाणी, गुरुआ की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारे की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआं दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाओ मुक्त का कर ले। कहिंदे कोई अपना उपा कर ले, कोई जतन कर ले। ये जो तैनूं वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसे जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहिगुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साध संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दते हैं, जबान दे दती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसते हैं जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहते हैं रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रामैया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने गुणा नूं कुछ याद कर, अकिरत घाना बन, कुछ याद कर, चेते कर। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ते क्या तेरी जो जड़ है, कितों तू पैदा होया है, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, की दिस रहा है, क्या नजर आ रहा है, तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टरों को भजे फिरते हैं, अस्पतालों भजे फिरते हैं, ही अखा च थोड़ा जा फर्क पै जाता, कन्ना च सुन दी, दंदा दी, होर सासन कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कितना औखा हो जाता है, जिसने सारा शरीर दिता है। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत्व उसने किवें इकट्ठे किए हैं, पंजा तत्वों का कितना सुंदर पुतला तैयार किया है, जिस दे विच ए रूप आई है, आत्मा पाई है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब का फरमाया जियो देही विच आए पाया, जो सो उसका हुक्म हुंदा है। इस रूह नूं, आत्मा नूं, ए पंज तत्त दा पुतला, पंज तत्तां दा ए घर, पंज तत्तां दी ए गड्डी, पंज तत्तां दा ए रथ शरीर, ए प्राप्त होया है। ए अकाल पुरख की कृपा है, अकाल पुरख की मेहर है। कितना दिमाग कम करता है, किवें कम कर रहा है, ए माता पिता की कृपा तो नहीं है, ये तो अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। शरीर की रचना तो उसने की थी। सो अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा है जो उसने सानू ये हथ पैर दे दते हैं, अखां दे दतियां हैं, ये शरीर दे दता है, शरीर दे विच चलन की शक्ति पा दती है, ये रूह नूं ये जड़ा है ये शरीर बख्श दता है। ये अकाल पुरख की कृपा है, ये वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा है, इस विच अपनी कोई ताकत नहीं है। ते दूसरी कृपा जीव की मनुख की अपने आप ते हुंदी है कि यह प्रभु का परमेश्वर का नाम जपे, सत्संगत करे, सेवा करे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अपने आप ते कृपा करे, कुछ मेहनत करे, उदम करेंद ज्यू तू कमाव दया सुख पुंच, ध्याई दया तू प्रभु में नानक उतरी चिंत। यह अपने आप ते कृपा करे, संगत विच जावे, वैसे यह भी कृपा वाहिगुरु परमेश्वर की है, संगत विच जो सत्संगत की प्राप्ति है। फिर इसने क्या कृपा करनी है, गुरु दे वचना नूं कमाउणा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अपने आप ते कृपा करनी है। दूसरी कृपा
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ।

0: जे को वचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरी है। जो अपा इस संगत विच विचार रहे हैं गुरुआं दे वचन ने, संतां दे वचन ने, साधुआं दे वचन ने, जितनी भी गुरबाणी है बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सब संतन के वचन इकट्ठे कीते हुए हैं। सो जो अपा सारे रल के विचार रहे हैं कि सानू की करना चाहिए है की नहीं करना चाहिए है, जे को वचन कमावे सो ये अपने आप ते असी कृपा करनी है। इस नूं असी फिर गुरु महाराज ने कमावा वचन लिखा, जे को वचन कमावे संतन का, कमाउण वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। सो इन्हां वचनां नूं कमाउण वास्ते सानूं मेहनत करनी पवेगी, कुरबानी भी करनी पवेगी, सानूं जिहड़ा है इस वास्ते घालना करनी पवेगी, किसी काम नूं घालना, क्योंकि घालना घाले तों बिना यह काम नहीं हो सकता है। सो फिर तीसरी जिहड़ी कृपा है, तीसरी मेहर है, गुरु करदा है, गुरु प्रसाद दी तरी है। फिर गुरु दी कृपा हुंदी है, जे को वचन अपना गुरु दी कृपा, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए, फिर पूर्ण कृपा मन बस, जो मन बस विच आ जांदा है। सो गुरु साहब एक तीसरी मेहर करदे हन, कृपा करदे हन, किन्हां ते, जो अपने आप ते एक कृपा करदे हन। बोलो पहली कृपा सुनी अकाल पुरख ने सानू कर दिती है, इस देही को सिमरा देव सा देही बाजार की, वजो गोविंद पूल मत जाओ मानस जन्म का यही ला। इस शरीर नु जिस नु देव ते तरस रहे हैं, उस शरीर सानू बख्श दिता है। गुरबाणी गुरु महाराज ने कृपा की है, दसा जामिया के अंदर कितनी कृपा की है, गुरु साहबान ने तत्त ते बैठ कर करके सारे अपने परिवार नु बार करके अमर दी दात, सिखी दी दात, जो ए गुरु साहब जी ने कृपा की है, दसा जामे ने अंदर बहुत ही बख्शिश की है। गुरु नु असी मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु परमेश्वर का दूसरा स्वरूप है। वो गुरु परमेश्वर का निर्गुण जो परमेश्वर है, निर्गुण जो परमात्मा है, वो नजर नहीं आता है, परंतु जे उस नूं सरगुण स्वरूप दे विच देखना तां गुरु दा दर्शन परमात्मा दा दर्शन है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सो कौ टल गुरु सेवी है हन सह सवाए, दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख होवै सिवत समधी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म। गुरु दा दर्शन परमेश्वर दा दर्शन है, जिमें सत संगत निर्गुण निर्गुण जो वैकुंठ है, निर्गुण सचखंड है, जो साडी दृष्टि दे विच नहीं आउंदा। गुरु जी कहिंदे हन सचखंड वसै निरंकार, परंतु सरगुण सचखंड जो है, यह साध संगत जो है, सच्ची संगत है, जिथे परमात्मा का इकट्ठे होके सिमन किया जाता है, जाप किया जाता है, हरि जस किया जाता है, यह सरगुण सचखंड है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु,
0: यह सरगुण वैकुंठ है। कहो कबीर कही है काहे साध संगत वैकुंठ, साध संगत सचखंड का सरगुण स्वरूप है। सो साध संगत ऐसे तरह जो गुरु गुरु जो है, ये परमेश्वर का परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। गुरु का दर्शन, गुरु नूं असीं इस करके मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, अरदासां बेनतियां करदे हां, है तां शरीर गुरु का साडे वर्गा शरीर सी, जिन्हां ने उस ते विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, उन्हां दा भला नहीं होया। जिन्हां ने गुर परमेश्वर एको जान, गुरु तो परमेश्वर नूं एक जाणिया, गुरु ते विश्वास किया, धन गुरु नानक ते विश्वास किया, गुरु दशमेश पातशाह ते विश्वास किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते भरोसा करनगे, उन्हां जीवां दा उधार हुंदा है। उन्हां नूं गुरु जिहड़ा है ज्ञान बख्शदा है, वह ज्ञान बख्शदा है, दुनियावी ज्ञान जो है यह तां एक दुनिया दे विच रहण वास्ते, कुछ बंदा किसी काम दे विच किसी खेते दे विच एक्सपर्ट हो जाता है, परंतु गुरु जो बख्शदा है यह ब्रह्म ज्ञान बख्शदा है, आत्म ज्ञान बख्शदा है, रूहानी ज्ञान बख्शदा है, विछड़े हुए जीव नूं परमात्मा दे विच मिलाउंदा है। इस करके आख्या जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ, दरगाह दा वसीठ, दरगाह दा वकील, वकील जो है। जे सोचन दा उग वह सूरज चढ़ा हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन कोर, गुरबिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना। जितना मर्जी यह मनुख दुनियावी ज्ञान इकट्ठा, किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लवे, परंतु परमेश्वर दी समझ गुरु तो बिना नहीं आउंदी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: कितना कुछ भी यह बन जावे, जा माइक पदार्थ इकट्ठे कर लवे, गुरु जी कहने नव खंडन को राज कमावे, अंत चलाएगो
1: हारी।
0: अंत नूं गुरु तो बिना, परमेश्वर दे नाम तो बिना मनुखा जन्म दी बाजी, ए जीव हार जांदा है।

पर असी नाम दा स्वाद छड़ के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही सहेड़े हुए दुख।

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही। रिधियां सिद्धियां नू प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर ली। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए जदों वली कंधारी, जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे तपस्या कीती, रिधियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां, ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा। धन गुरु नानक पातशाह, क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है, ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़िया रिधियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा, जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तां आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी। तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहा, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नू पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह, अच्छा अहंकार जो करना सी मर्दानिया, आ दो पत्थर पुट सत करतार सत करतार नाम जपदिया। जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया, मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां। आ मैं हुणे दसदा हां, अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा, महाराज कृपा करो, मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना, उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एदा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है, ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती, कृपा कीती, कोट ब्रह्मंडा दे बांधे। जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया, तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता, ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी, धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां, पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा है ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिधियां सिद्धियां अहंकार ते, क्योंकि पुन्ना ते रिझदा रब। हो सकदा है मैनू तारन लई मेरियां रिधियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे, मन नीवा हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਕੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ

ऐसा विचार करो, हम भी ऐसे बगीचे के बूटे बन जाएं जिस बगीचे के बूटों को वासना रहित फल लगता है, निर्वाण पद प्राप्त होता है। ऐसा फल जिसमें नाम रस है, नाम रस के अलावा और कोई भी वासना नहीं, और ऐसे गुरु को नमस्कार करें जो ऐसा माली है, जो इन बूटों को अमृत से सींचता है। देखना, इस बगीचे के बाहर जाकर देखो, आसपास बिखुआ के कुंटा, बाहर ईर्ष्या है, दुविधा है, कपट है, छल है, बाहर तो जहर है। इसीलिए हमें चेतन करते बोले, देखना इसके भीतर आपको अमृत से सींचा जाता है। वो ऐसा अमृत जिसने आपको अमर करना है, जिसने आपको जन्म मरण के चक्कर से बचाना है, आवागौण से बचाना है। और ऐसा है जो गुरु की नजर में फूलता है, उस बूटे को ऐसा फल प्राप्त होता है जिस फल से वो सच प्रकट हो जाता है, जिस सच से ये बोया गया है। ऐसे मालूम होता है गुरुमुख की टेक जो है, नाम है, ओनली नाम। गुरुमुख की टेक ओनली नाम। गुरुमुख परमात्मा के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरुमुख का दान है। गुरुमुख परमेश्वर के नाम की कमाई कर, गुरु शब्द की कमाई कर, अपने मन को, अपनी मत को तो लेता है, ये गुरुमुख का स्नान है। पानी से तो सब नहा लेते हैं, लेकिन जो वाणी से नहाता है वो गुरुमुख है। देखना, पानी से हमने अपने तन को, अपने शरीर को स्नान कराना है, ऐसे नहीं कि हमने स्नान नहीं करना। शरीर को पानी के स्नान की जरूरत है, लेकिन पानी का स्नान के अलावा आपको मन को भी वाणी के स्नान की जरूरत है। आप जितनी देर तक वाणी से स्नान नहीं करते, आपका मन अरोग ना होगा। देखना, जे मन अरोग नहीं, जीवन भी अरोग नहीं। जे जीवन अरोग नहीं, ये काया भी, ये तन भी अरोग ना होगा। सिर्फ हम सोच लें कि सिर्फ तन को अरोग रखें, मन ये तंदुरुस्त ना होगा, ते शरीर भी काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टल। मन क्रोध करता है, मन काम करता है, लोभ करता है, लेकिन भोगना तो शरीर को पड़ता है। भोगता शरीर है, इसलिए गुरुमुख
वाणी से स्नान करता है, प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल होए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रे हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुंघना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितरसा दे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के ए हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरुमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरुमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरुमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करो लेवला। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना, ऐसा स्नान किया अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की जोत दिखाई देती है, उसकी देखनी कैसी हो गई। अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जहां गुर देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखो वाहिगुरु। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम अखो वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधि बांटता है, यह गुरमुख का दान है। निरपो होए पजय भगवान, साध संगत मिल कीनो दान अखो वाहिगुरु। ऐसा दान, ऐसा दान करने वाला गुरमुख एक बेनती कर दूं, ये कभी मरता नहीं अखो वाहिगुरु। गुरमुख कभी नहीं मरता। देखना, शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं अखो वाहिगुरु। मेरे साहब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्मे सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरमुख नहीं।
जो गुर के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितृवाणी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुर का शब्द अपार। आखो भाई, जिथे गुर का शब्द है उत्थे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। आखो भाई, गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं, और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रख कर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितृवाणी में बोले थे। गुरमुख तो यह कहता है, सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है, लेकिन गुरमुख ये बोलता है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो आखो किच हर किया पेओ कबीर कबीर। भगत कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है ना हम किया ना करेंगे ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम, जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है हम किया हम करेंगे, अखवाई हम मूर्ख अखवाई गवार, करने वाला बिछरिया दूजे पाए प्या। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है, कर कुछ सकता नहीं। पितृवाणी में ऐसा बोला, कहते गुरमुख मुए जीवदे परवान है, मनमुख जन्म मरा है। आखो भाई, देखना आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाहणियां देखी, टाहणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाहणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे, लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा। छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है, वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा हो गई, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया, जे पतझड़ आ गई लेकिन बसंत रुत की फिर कामना है। आखो भाई, जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत रुत आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई, जो टूट गई वो मुर्दा हो गई, जो उसके साथ जुड़ी रही वो जीवित रही। ऐसे ही मन मुख वो छड़ी हैं जो परमेश्वर वृक्ष से टूट गए हैं, उनका नाम साकत है, उनको मनुख नहीं बोलते, मनमुख बोलते हैं, वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं, वो आत्मिक तौर पर मर गए हैं, जीवित नहीं, वो छड़ी जैसे हैं। पेशा कितना अपने आप को सवार लें, लेकिन जीवित नहीं, आत्मिक तौर पर जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, उनको फल नहीं लगेगा, वो किसी को भी अपनी बगल में सुख नहीं दे सकते, जैसे छड़ी किसी को छांव नहीं दे सकती। छड़ी किसी को पीड़ तो सकती है, सुख नहीं, मन में किसी को दुखी तो कर सकते हैं लेकिन सुख नहीं। शायद इसीलिए हमें बोला, मन मुखा नालो तुटी भली जिन माया मोह प्यार। लेकिन गुरमुख वो छड़ी है, वो टाणी है जो परमेश्वर वृक्ष से जुड़े हुए हैं। देखो जन्म तो मनुख का भी, जन्म गुरमुख का भी माता की कुख से हुआ है, जन्म एक जैसा है, लेकिन जन्म पाकर जीवन में एक तो प्रभु वृक्ष से टूट गए, एक परमात्मा की याद में जुड़े रहे, जो जुड़े रहे वो तो फल प्राप्त करते हैं, वो खिलते हैं, सदा विकास में रहते हैं। आप विकास में, दूसरे को भी विकास में रखते हैं, लेकिन जो मनमुख हैं टूट गए, उन्होंने तो अपना जन्म भी बर्बाद कर लिया, अपना जीवन भी निष्फल कर लिया, ऐसे लगता है वो अपना मरना भी निष्फल कर रहे हैं, मरना भी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पर हैं, मरना खराब कर रहे हैं। देखो जीवन तो वो है जो जीवन जीते ही हम जीवन जीते हुए अपने ऐसा जीवन जिए, अपने जन्म को भी सवार लें, संसार वाले कहें इनकी माता तो धन है जिसने जन्म दिया है, जीवन में भी धन धन हो तो अपने जीवन में अपने मरने को आप सवार कर चले जाएं, ताकि जाने के बाद सब प्यार से याद करें।
ऐसा ही बोला। गुरमुख मुए जीवदे परवान है, ओता जूंदे भी परवान ते मरण तो बाद भी परवान, पर मनमुख मानमुख जन्म मरा है आखो वाहिगुरु। मनमुख ने अपना जन्म बर्बाद किया है, कैसे पितरबानी में शब्द से हमें समझाते हैं।

छो जन हुए परवान, कुल उधारे अपना। छो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले सुगंधी के नजदीक पहुंचे। वैसे सुगंधी का एक स्वभाव भी है, कैसा है? सुगंधी हमेशा ही फूल के नजदीक ले जाती है। जी अगर नजर फूल ना भी आए तो उसकी याद में समो देती। ये सुगंधी का स्वभाव है। सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले जिधर से सुगंधी आ रही थी उधर पहुंच गए। जिसके पास वो फूल था सुगंधी देने वाला, वो बोला, देखना ये सुगंधी इस फूल की है। देखने वाले ने फूल को देखा, उसके खेड़े को देखा, उसकी पत्तियों को देखा, गुलाबी रंग को देखा, बहुत मस्त हुआ, कैसा सुंदर फूल। समय बीत गया, कई सैकड़े वर्ष बीत गए, लेकिन सुगंधी फिर भी आती रही। सुगंधी को सूंघने वाले फिर उसके पास पहुंचे। पहले तो आपने फूल दिखाया था, अब तो आपके पास फूल नहीं है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सुगंधी कैसे आ रही है? वो बोला, ये बात तो बिल्कुल सत है, हमारे पास फूल नहीं, ना हम फूल को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास फूल ही नहीं, दिखाएं क्या? लेकिन ये सुगंधी उस फूल के अत्र की है। अब फूल नहीं है, हमारे पास अत्र है, ये अत्र की सुगंधी है। ऐसे ही मालूम होता है गुरमुख जीवन में सुगंधी बांटते रहे, आंखों भाई सूंघने वाले सूंघते रहे। जितनी देर तक गुरमुख उनको शरीर मिला, उतनी देर तक उस शरीर में सुगंधी का प्रकाश किया। उनका संग करने वाले और शुभ गुणों की सुगंधि लेते रहे। जो जीवन में दुर्गंध थी, मनुख के भीतर थी, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए गुरुमुख का संग क्या है? सच का संग, सत का संग, ऐसे विचारों का संग जो सत में प्रवेश करते हैं। गुरुमुख का बोलना भी सच, गुरुमुख का गाना भी सच, गुरुमुख का सुनना भी सच, गुरुमुख का देखना भी सच। ऐसे लगता है गुरुमुख के पास सच के अलावा कुछ और होता ही नहीं।

ऐसे गुरुमुख सदगुरु का संग करते थे, सदगुरु को अपने जीवन में भी याद करते थे, सदगुरु से गुरु शब्द की सुगंधी लेते थे, गुरुवाणी की सुगंधी लेते थे, गुरु शब्द की विचार की सुगंधी लेते थे। आप देखो शरीर चले भी गए, हम भी वही सतगुरु की, वही शब्द की, वही गुरुवाणी की सुगंधी आप भी ले रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि गुरुमुख जीते जी भी सुगंधी बांटते हैं, मरने के बाद भी बांटते हैं। गुरुमुख जीते जी भी अपने सतगुरु को नहीं भुलाते, मरने के बाद शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी याद में बैठने वाले भी उसी सतगुरु को याद करते हैं। इसलिए ठीक बोला, गुरुमुख मरते ही नहीं। आखो भाई गुरु, मरेंगे तो हम शरीर मरेंगे, वो कैसे मरेंगे? इसलिए हमें बोला कि देखना गुरुमुख की बरसी मत मनाना। आखो भाई गुरु, गुरुमुख की याद मनाना, बरसी तो उसकी मनाएंगे जो मर गया है, शरीर मरा है, गुरुमुख तो मरा नहीं। आखो भाई, गुरुमुख की याद मनाओ, बरसी नहीं। मरत मरता तो है ही नहीं। देखना बंसरी बजती थी, बंसरी बजाने वाले बंसरी बजाते रहे, बहुत बजाई, सुनने वाले बोले बस करो, बहुत हो गया, आपने बंसरी बजा ली, अब तो आराम कर लो। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। फिर बोलने वाले बोले आप कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी, बाद में बजा लेना। लेकिन बंसरी रुकती नहीं। फिर बोला आप पानी पी लो, प्यास लगी होगी। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। ऐसे लगता है अब तो बंसरी बजाने वाले को बजा रही है, बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा। अब ऐसे मालूम होता है कि बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा, बल्कि बंसरी ही बजाने को बजा रही है, बंसरी बजाने वाले को बजा रही है। देखो बंसरी बजाने वाला हीरो हो गया, वो तो बंसरी का रूप हो गया। अब उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना आराम है, बिल्कुल हीरो हो गया। ऐसे ही गुरुमुख जो शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम वाणी का अभ्यास करते हैं, प्रभु की कीर्ति करते हैं, इतना अभ्यास किया शब्द का, इतना अभ्यास किया शब्द का, अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, ना उनको ऊंग है ना भूख है। आखो भाई, बोला गुरुमुख अंतर सहज है, मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भूख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिते आत्म राम प्रकाश। ना ऊंग है ना भूख है। मैं एक बेनती करूं, गुरुमुख को कभी आलस आता ही नहीं। जे हमें आलस आता है तो समझे ना अभी हम गुरुमुख नहीं बने। आखो भाई, जिसका गुरु ये बोले आपने अमृत वेले को संभालना है, आलस क्या करेगा? गुरुमुख आलसी नहीं होता। जे अगर अभी भी हमें आलस है तो हम गुरुमुख नहीं। आखो भाई, मनुख हैं, मनुख आलसी होते हैं। आखो भाई, लेकिन गुरुमुख नहीं। गुरुमुख के जीवन में ना ऊंग है ना भूख। गुरु शब्द का अभ्यास करते करते ही रहे करते ही रहे, गुरु का शब्द का अभ्यास करते करते ऐसे हुआ अब तो ऐसे लगता है अभ्यासी अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि गुरु शब्द अभ्यासी को अभ्यास करा रहा है। अभ्यासी कीर्तन नहीं कर रहा, बल्कि कीर्तन अभ्यासी को कीर्तन करा रहा है। आज नाम वाणी की कमाई अभ्यासी नहीं कर रहा, बल्कि नाम वाणी अभ्यासी को अभ्यास करा रही है। आज देखना अभ्यासी तो जीरो हो गया, अभ्यासी कहां गया? अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू ही रह गया। आखो भाई, अभ्यासी की

ऐसा गुरुमुख का जीवन जो जीवन मुक्त हो जाता है प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधि लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधि बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधि बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधि बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधि जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दियां भुलां हो सकदियां हन, बख्श लेनी। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। आखो भाई, टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है। आखो भाई, ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे। आखो भाई, आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आपे संगत सद बहाल है। आखो भाई, मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था। आखो भाई, बैठाने वाले ने बिठा लिया, अब समाप्ति हो रही है, आपे विदा करावे, विदाईगी भी आप देगा। आखो भाई, लेकिन इसकी विदायगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है। जब बुलाता है तो अपने आप को बिस्माती रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर बिस्माती रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस बिस्माती रंग को संभाल लेना। आंखों वाहे करो, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते। वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया, ना खोया, फिर जब मिलेंगे आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे
کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے سروتے بن جائیں گے کہ سروتے میں بہت شکتی ہے۔ جے سروتا اچھا مل جائے، وسمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا۔ یہ سچائی ہے۔ جے سروتا وسمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرکٹ ہو جائے گا۔ سروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے۔ میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی سروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے سروتے ہیں، اب تو صرف اندر سے جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں، بلکہ ایک میں ایک ہو جائیں گے۔ آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے۔ آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ، رام کلی محلہ تیجا انند۔

पवित्र शब्द कबीर जी महाराज की पवित्र बाणी का है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने किया, वड्डियां लोगां ने किया, उहदा जिक्र कर रहे हैं। कहिंदे ने कि बंदगी करदा हां, उहदी महान कृपा नाल सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी दात का होकर लोग इन मत्थे टेकते ने। है ये क्यों? बंदे का सुभा है, बंदा किसी की वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करता, किसी की प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करता। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पाके गंगा विच सुट दिता जाए। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझते ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया उहदा जिक्र कीता। पर कहिंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने उहदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। ਤਾਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ

कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तू भले

सरदा मन की पूरे प्रभु मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जान दे। जीव दे मन अंदर की मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की ये परमात्मा जान दे। जिदे अगे आके असी शीश नवाने ना, वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की चाहता की। प्रभु मेरा अंतर जामी जान, मेरा प्रभु जानता है अंदर की बुझ लैंदा, देख लैंदा कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया, अज की मांग है, अज इसनू की चाहिए, जो भी चाहिए सतगुरु देंदा है। क्यों?

खसम हमारा ता मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा, सब कुछ करन कराने वाला उपापी, अंतर्जामी करने हारा, सोई खसम हमारा। जिदा एहो जिहा खसम होवे, जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे, कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जांदी नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनूं ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

আমি কাচি দে মানুষ অবগামী, কাচি দে মানুষ অবমানী, মেরা অন্তর জামি জান। ও প্রভু সব কিছু জান সাহেব আখদে নে, জি কি বিরথা হয়ে সো গুর পে অরদাস কর। যে তেরে মন অন্দর কোই ভাবনী হ্যায় না, তে আ কে গুরু আগে অরদাস কর। ও গুরু ভাবনী পুরি কর দেবে, খালি ঝোলি নি ভেজেগা ভর দেবেগা, ক্যোকি ই দরবার হি এসা হ্যায়। इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए, जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हसते गए ने, इत दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक्को जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार अंदर शीश दी मांग हुई ते शीश पेटा दे दिता गए, है ऐसा दरबार कोई? सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे, चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दी दरबार च आए कि असी खाली चोली चले जाइए, कदी हो नहीं सकता। आ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नरमंग कर ली ते प्रभु कड़ा है। प्रभु मेरा अंत जमी जान, तू करता सब किछ जानदा। गल भी करनी आउंदी होनी चाहिदी, दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है। आ कि कहिए तू करता सब किछ जानदा, तू तो जानना है परमात्मा मैनू की चाहिए, मेनू की लोड़ी दे, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसन की कोई जरूरत नहीं।

बेहुना चात्र को क्यों कर्त्र पुतावे। नाद पुरंग के बेदया सन मुख उठतावे, पावन लोपी कुसुम बांस का मिल आप बंधावे। क्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे, हर बिन रह न सको एक राती। एक रात भी गैप पैदा है ना, ती परमात्मा में ते मर जान जीवित नहीं रह सकता, पर सानू ते दिन ही बीत जाते ने, महीने लंघ जाते ने, साल बदी दिन आ जाते ने, पर कदी ख्याल ही नहीं कीता, कदी सोचिया ही नहीं, कदी विचार ही नहीं कीता कि असी भी ऐसी तरफ पैदा कर ली जिन्ना चिर गुरु दरबार विच ना आईए सानू भी शांति ना मिले। ऐसा प्यार होना चाहिए, हर बिल रह न सको एक राती। किवें जो अमले जो बिन अमले अमली मर जाई है, जो हर बिन हर

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उससे

नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीरा मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाए, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत।

this is what we have done. ऐसे किया है. स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहा किसी ही पे सगले लर लर मुआ बाद बाद विवाद. हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है. किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिलो दुआ. किसी ही वाद घाट किसी ही पै सगले लर लर मुआ. किसे दे थोड़ा जा घट, किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़के मर रहे हन. इस चीज च ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा है, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच. स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ये प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा. उस नू मिलन दी ये जो वारी सी, ये तू एना चीजा दे विच ही चुकाती है, एना चीजा दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए. कहंदे हन ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने. ये तेतों हिसाब, तेतों ए सवाल, ये तेतों लेखा पुछया जाना है. कहंदे हन

की आवाज ऐसों से तंदुरुस्त के साक्षा जी समाधि आवाज लाद की कर रहे हो तो हजूर कहने लगे।

स्नान से स्नान करके चले आए, एक दिन कले तुर जाए तो एकांत बह के अपने सारे चीज मूल मंत्र का जाप करे। संत बड़ा महान बड़ी शक्ति है ये लंकारी मंत्र, जितना जप लो यदा बड़ा काम, तुरदियां फिरदियां उठदियां बहदियां हर नाम, वो नाम वाहिगुरु जी का जपांगे सतगुरु दी मेहरां, फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला, फिर साडा एक लोक दुखी परलोक अखीरला आसा जी वार मिलकर लगाइए, उस तो उपरंत कीर्तन मात्री और

0: तेरे को सत बजन नहीं कहा जाता आखो सत
1: केंद्र एक बार असि कह बैठे लेकिन लेकिन लेकिन बाबा जी ने फिर ताड़ना की केंद्र बिल्कुल ठीक लेकिन कित लिखे गुरु ग्रंथ साहब आखो साधना गुरु ग्रंथ साहब के लफज नचोड़ कढ़ो गरीबी की पढ़ाई गरीबी की सत बचन की पढ़ाई निम्रता की पढ़ाई कहने लगे सानू कहते फारसी सिख गया लेकिन बिल्कुल ठीक इथे तो सत बचन की पढ़ाई कोई गल कहनी सत बचन जी अच्छा जी सत बचन जी एडी बरीकी कढ़ दे कि लफजां च भी गरीबी आवे हको सतना गुरु प्यारे हो बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोए पाई।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करा, उदा तरला करा, उदे चरण पकड़ा, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।